सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना। गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना, तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख।

कवि कहता है सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया सारे हिंदुस्तान दे विच कोई राग नहीं गाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कविता नहीं गाएगा, सास संगत तेरी कोई सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं, एक इतिहासक सच्चाई।

से बादशाह का घर नहीं और वो था है आनंदपुर साहब आपको सदा जिसे कलगियां वाला पातशाह है। तो मैंने भी सुने वो कवियां का बड़ा मान करके सुने उन्ना बवंजा कवि रखे हैं कि सुजान चंद मैं तेरा दोस्त हूं चंगा मित्र हो ही।

भी सेवा करता है, पता नहीं क्यों आए, बोलता काटा है, सिमरन करता है, पता नहीं कौन जब संग

सिर संगता समय सुजान चाहते इस पिंड वाले चल पे पिंड के लोगों को पता लगा सुजान चंद पता

मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल कौन को दवाई दे इस जान चल सोच जे माई नाल जावा तो फिर दर्शन नहीं हो अगे बड़ा तरस है पता नहीं और कितना तरसना पवेगा संगत एक लंघदियां ने दर्शन कर जादियां ने जो दर्शन करके आदि ने उन्होंने खुशी च

ये पता नहीं कलगियां वाला बेटा होगा कि नहीं। सोचा भी चुका हूं दौड़ता जाता,

माता सेव को अपनो प्यार सी सेव निमा जिरा अमृत छकेगा वो मेरा पुत्र होगा, मैं उसका पिता ते तुसी उसके माता हो। आओ माता सेव को दी गोद विच बैठ कलकियां वाले पिता का प्यार लेना है।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिया बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे नहीं दोस्ती करनी है

एक ओ सज्जन जिन्हों कच्चा सज्जन कहते, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़ा पासे ले जाए, ओनू कहते ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है, ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छाट गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त, पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे, ओनू आखे छाट माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी, किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े, ओ पक्का सज्जन।

जिस पास बैठे हैं सोइए सबना दावेसा जिद कोल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे सच्चे कोल बैठांगे ते सच्चे वर्गे हो जावांगे इस करके दोस्ती करनी है कच्चे दी ना करो पक्के दी करो ते सच्चे दी करो ताकि आप भी सच्चे हो

एक जोगी जिन्हें तपस्या कीती ते वर प्राप्त कीता, मैं जिन्हू चाहवां

जोगी कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया भाई तिलकू जी ने बुआ खोलिया।

किन्नी शक्ति दा मालक है जेड़ा मेरे आखे नहीं लगदा। जोगी आसन ला के बह गया, रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन, उन रिधियां सिद्धियां दे सद

दरवाजा खोल जोगी आप तेरे द्वारे आया पर हुन पाए दिल को निबुआ नहीं।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया पाई दिल को जी उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनी जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो जांदे।

जोगी जड़ा से कह लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा है जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े

जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु दी, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने, उस गुरु दी उम्र किन्नी कै? पै दिल को कहन लगे, पिता का जन्म के जाने पूत, दुनिया दे हिसाब दे नाल उन्ना दी उम्र

40-45 साल का गबरू नौजवान गुरु मेरी उम्र 100 साल तो उत्ते रिधियां सिधियां दा मैं मालिक नौजवान गुरु जाके मथा टेकांगा ए नहीं हो सकता मैं वापस चलिया नाल आए लोका ने समझाया अज तू अगे आ गए दर्शन करके जा दिल करेगा मथा टेकी दिल करेगा ना टेकी तेनू केड़ा किसी ने धक्के नाल फड़ के मथा टेकाना लोका ने समझाया ताए जोगी फिर तुरिया ए अमृतसर दे लागे पहुंचे उधर तन गुरु अर्जन साहब अंतरयामी सिखा नु कहा एक शैमैना लगा दियो।

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए, मलाह नूं कहन लगे बचण दी कोई उम्मीद है?

जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताई तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन, एक है भी मैं कल्ला। सारियां दी निगाह मेरे ते चली गई, कहन लगी एक कल्ला है, लगदा भी कोई साधु ना, एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दे। जद सारे मेरे वल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देने। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो, बलि दियो, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे पासे कीता ते नाले किया।

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड्याई दिती निहाल हो गए जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारिया दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा भाई दिलकू दरिया सी गुरमुख सी जोगी ने दोस्ती की थी जोगी तर गया इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण तुहाडा

मां ने अस्सी फरीद एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिखे, नाम बिना नर कहीं न लिखे। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राज मंडित।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

0: ज्ञान का बतावन रहे गुरबिन ज्ञान हो, ओ गुरबिन ज्ञान हो।
1: पापा जी तो अड्डी इस छबील आसरे साडा पेंडा कटिया जाता
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी, ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया,
2: अब मोहे जलत राम जल पाया, राम अधिक तन जलत बुझाया, मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी ही मन चल लग रहे थोड़ी कुल के हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें तो कुछ पता हुए
2: का पता
4: ए मेरे पति ने इन्हों ने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी के दरख्त भी बेअंत
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तू कां उड़ के छपड़ी डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जाते ने
2: चिट्टे हो उड़ते जाते ने।
3: हां बाबा जी ते नारी आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे
2: कागू हंस करे कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल ले जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्ने दूर है गोइंदवाल?
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं
2: परमेश्वर भली करेगा कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

सारे ही जीव अकाल पुरख वाहिगुरु ने इकट्ठे भेजे हैं। ये संसार एक बाजार है जिथे जीव वणज करन लई आए है, सौदा करन लई आए है। जिन्हां ने इथे आके सच दा वणज कीता, सेवा सिमरन परोपकार कीता, ओ ता लाह खट के गए। ते जिन्हां ने इथे आके निरी माया दी ही खेड खेडी है, हजूर कहंदे हन ओ अपना मनुच्छा जन्म एवें व्यर्थ गवा के जाने। क्योंकि संसार एक रंग भूमि है जिथे हर जीव आपो अपनिया खेडां विच रुझिया होया है। हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगत सगल जगत। दाई दाया कहंदे हन खिडाउन वाले नू, दिन अते रात इस मनुख नू खिडा रहे हैं और सारा जगत इस विच खेड रहे हैं। और जेड़ी जेड़ी भी कोई खेड खेड रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक दी खेड नू बड़े गौ नाल तक रहे हैं, बड़े गौ नाल लिखिया जा रहे हैं। जिन्हां ने इथे आके नाम दी खेड खेडी, ओ ता निरंकार दे चरणां दे नेड़े हो गए, उदी प्रसन्नता दे प्राप्त हो गए। जिन्हां ने मेरी माया दी ही खेड खेडी है, ओ मालिक दी बख्शिश तो दूर हो गए। हजूर दा वचन है पवन गुरु, पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेरे के दूर। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हां ने इथे आके नाम दी गालना कीती, नाम दा वणज कीता, ओ लाह खट के जानगे। इसलिए हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है भई मरण दे बाद भी कोई जीवन है, गल मुक नहीं जांदी। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि साकत पुरशां दा पापियां पुरशां दा भी मरण दे बाद जीवन है, गुरमुखां दा सतपुरशां दा महापुरखां दा भी जीवन है। पापी दा जीवन कैसा है, हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है भई पापी साकत पुरुष जो है ओ पहला ता अपना मनुच्छा जन्म ही नरक बना लैंदा, ते जदों अपनी औदी समाप्त करके जांदा है उस लई कुंभी नरक फिर तैयार है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, तिन्ना मुख डरावने, ए साकत पुरशां लई है। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्हां विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे थोर ना थाओ। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन माधानिया त्यो मथे धर्म रह। ए ता है साकत पुरशां दा जीवन। ते गुरमुखां दा जीवन कैसा है, भले पुरशां दा जीवन कैसा है, हजूर कहंदे हन के अंतर गुर आराधना। गुरमुख जन जो हन ओ मन करके भी जपदे हन और रचना द्वारा भी जपदे हन श्री वाहे गुरु, और नेत्रां द्वारा गुरु का दर्शन करदे हन, कन्ना द्वारा गुरु की बाणी श्रवण करदे हन। इसलिए ऐसे गुरमुख नू किथे निवास मिलदा है, हजूर ने मोहर लगा दी। अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या, रत्या तो भाव है सतगुरां दे चरणां विच जो जुड़दे हन उन्हां नू किथे थां मिलदी है। सतगुर सेती रत्या दरगह पाईऐ थाऊ, दरगाह विच भी निरंकार उन्हां नू अपने चरणां विच वासा बख्शदा है। इसलिए जीव सारे ही आए हन, पर जो नाम दा वणज करके जाणदे उन्हां दा मुख एथे भी उजला है ते दरगाह विच भी उजला होएगा। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है।

हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि जिन के पल्ले तन वसै तिन का नाम फकीर। फकीर तो भाव किसे संत महात्मा दा नाम नहीं, फकीर कहते हैं मंगते नू। मंगते नू कोई कितना भी दान कर देवे ओ मंगना नहीं छड़दा, फिर मंगता है। ते तन दा लोभी भी तृष्णालु पुरुष भी जितना भी तनी हो जावे ओ फिर मंगेगा, फिर हर एक दी खुशामद करेगा भाई किवें मैनू तन प्राप्त हो जावे। हजूर कहंदे हन कि ज्यों पावक ईंधन नहीं द्रापै, जिस तरह अग्नि दे विच लकड़ा पाई जाओ कदी ओ नहीं कहंदी भाई मैं रज गई हां, ऐसा ही तृष्णालु पुरुष दा जीवन है कि ओ हर एक दी खुशामद करदा है, कहंदा है मैनू किवें धन प्राप्त हो जावे। पर हे वाहिगुरु, जिन्हां दे हिरदे विच तेरा नाम वस गया ना, ओ गुणा दे खजाने हो गए। क्योंकि सच्चे साव ओ हन, सच्चे तनी ओ हन, जिन्हां ने एथे आके नाम दा वणज कीता, जपया श्री वाहिगुरु। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन सच तन वणजो।

ऐसा निर्मल जल होंदा रोगी शरीर नू अरोग कर देंदा। किसे धरती दा ऐसा कठोर जल होंदा अरोग शरीर नू नित दा रोगी बना देंदा। नाम दोहां दा ही जल है, एक जल सुख रूप है, एक जल दुख रूप है। भाई साहब तीसरा दृष्टांत दे रहे।

प्रभु दे चरणां दी प्राप्ति हुंदी है जिथे, उत्थे माड़े कर्म करन दे नाल जीव नरकां दा भागी बन जांदा है। साथ संगत बोलो श्री साहब जी कहंदे हन, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, वही आखदे हन खाते नू, ओ जेड़ा खाता जिदे विच तू लेख लिख रहे हो, चंगे लिख ले या पावे मंदे लिख, अच्छे लिख पावे बुरे लिख। ताई बाबा फरीद कहंदा है, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख न लेख, जे लिख बैठे ता आप नड़े गिरिबान में सिर नीवा कर वेख। हुण वेला है आ कीते हुए गुनाह कीते हुए पाप बख्शा लै, संगत विच आ के नाम जप के संगत दी सेवा करके तेरे कीते हुए पाप लै जाणगे। जे इत्थे नहीं बख्शावेंगा ता फिर दरगाह विच तेरा लेखा खड़ोता है। कई कहंदे हन ना, ए जग मिठा अगला किस डिठा, ते गुरु नानक पातशाह कहंदे ने, जे मेरी सुमति लेनी है, कोई आम बंदा आखे ता बेशक झूठ मन लो, लेकिन गुरु नानक पातशाह दे इस कथन नू किवें झूठा करोगे। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही, उत्थे तेरी वही कड्डी जाएगी, तेरे लिखे जो तू लिखे तू आप लिखे, किसे होर ने नहीं लिखे। इस वास्ते हुण मनुष्या जीवन है, नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै, नहीं तां साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे।

कृपा कीजिए, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी क्यों देख ना पानी विच बहुते फेर बहे किरपन को, अब किछ कृपा कीजिए, हुण कृपा करो पातशाह जीओ, हुण मुक्ति दियो। ता साहब जी ने जल दे छटे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, किस किस नु नहीं तारे। आ कीड़े ऊपर भी जल दे छटे मार के आख्या जप श्री वाहे गुरु, तुसी भी जपो सारे श्री वाहे सत नाम श्री वाहे गुरु ते छटे मार के। जदों उस कीड़े नु साहब जी दी नजर पई तां ओ कीड़े दी जून छड़ के बिरद बाबा दिव मूर्त धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोग पिंड दे वासी इकट्ठे होके आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी उस रूप विचों परिवार दियां नूं आख्या आ जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन, गुरु नानक पातशाह निरंकार दा रूप है, इन्हां दे चरणों विच पाओ तां तुहाडी कल्याणता, इन्हां दा वचन मनोगे तुहानूं सारे सुख प्राप्त होंगे। इस वास्ते साहब धन गुरु नानक पातशाह कहंदे हन नानक आखे रे मन सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ वही। इन्हां स्वासां दे नाल प्याड़ी तेनू 24,000 स्वास मिलदे, उन्हां स्वासां नूं जप जप के सफल कर। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे सन, त्याड़ी एक पाठ सुखमनी साहब दा कर लै तेरे दिन दे लिते होए 24,000 स्वास सफल हो जाणगे। सात संगत बोलो श्री वाहे। फिर आप बड़े प्यार नाल क्या करदे सन, जे कोई छी माला पहली पौड़ी दियां रोज कर लवे ना, मेरा ते गुरु नानक ओदा जामन होया, मैं नरकां विच नहीं जान देंगा। प्यारी सात संगत जीओ, आ मनुच्छा जीवन जो मिलिया ना, आ जिस तरह इत्थे अपना घर बढ़ाया, अगां भी घर दी सोचो, जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। उत्थे तां साहब जी कहिंदे ने कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही, उत्थे जेड़े कूड़ियार हन उन्हां नूं थां नहीं मिलनी, उत्थे तां सचियारां नूं थां मिलेगी। भावें कोई भी होवे, किसे जाति दा होवे, किसे मजहब दा होवे, किसे धर्म दा होवे, जे उसनूं परमात्मा नूं याद कीता, गुरु नानक पातशाह दी आराधना कीती है, नाम जपिया, तां कबीर जी निर्णय करदे हन गुरबाणी विच के कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, ओ कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह कहंदे हन हुण वेला ही मेरी एक सिख्या लै लै, दुनियावी सिख्या तां लैंदा हैं, एक मेरी सिख्या भी लै लै। नानक आखे रे मना सुनिए।

0: पवित्र असाड़े से ओठने दी जाग सवाया जो नानक बिरले गुरमुख प्यारे
1: फायरे इस मन को समझाए फायरे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम प्यारे आई रे

जयपुर के लोग बसेंगे तेईस रहनी रहे सोई दिल मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरहाई जानो रहत बिना